में 120 मिलीमीटर और कांतो कोशन इत्सु और चुगोकू के इलाकों में 100 मिलीमीटर तक रहने का इम्कान है. بارش کی مقدار میں اضافہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने ताजा दौर के हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता हासिल की है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इनमें से एक हमले में शादी का जश्न मना रहे दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने इसे युद्ध अपराध बताया है। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी काउंटी सिरिक में शादी के समारोह पर हुए हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 67 घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को जमकर लताड़ते हुए उस पर संघर्ष के दौरान हमलों में बच्चों सहित नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि वे इन खबरों से अवगत हैं और इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। व्हाइट हाउस में बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन ताज़ा हमलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर बेहद जोरदार वार किया है और उन्हें नहीं लगता कि ये ताज़ा कार्रवाई ज़्यादा समय तक चलेगी, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि वे और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। नेपाल और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और मृदास्खलन के बाद दोनों देशों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है और 4,700 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने अपने यहाँ 1,204 लोगों के मारे जाने और 4,200 से अधिक के लापता होने की पुष्टि की है। उधर चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार उनके यहाँ इस आपदा में 21 लोग मारे जा चुके हैं और 540 से अधिक लापता हैं। दोनों देशों में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,225 हो गई है। अपने घर गंवा चुके कई लोग अब भी विस्थापित हैं। अधिकारियों के सामने चुनौती है कि उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए और संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए आश्रय स्थलों में स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए। इस बीच स्थानीय मीडिया केंद्रों के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम जिन आपदाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मजबूती से पेश करने का समय आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर ढहने से ये बाढ़ आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले चीन, अमरीका

और भारत जैसे देशों की ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि नेपाल मुआवजे की मांग करेगा। आओमोरी प्रिफेक्चर के गोशोगावारा शहर ने बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे ईजुमे नदी और ओदोमारी जलाशय के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आपात सुरक्षा चेतावनी जारी की। अधिकारियों का कहना है कि भारी वर्षा के कारण ईजुमे नदी के तटबंध टूट सकते हैं। ये स्तर 5 की चेतावनी है, जो 5 स्तरीय चेतावनी पैमाने पर सर्वोच्च है। शहर प्रशासन लोगों से अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखते हुए अपनी जान बचाने के लिए आसपास की इमारतों में शरण लेने, अपने मकानों की दूसरी या उससे ऊपरी मंजिलों पर जाने और ढलानों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने जैसे आवश्यक कदम उठाने का आह्वान कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस मध्य अफ्रीकी देश में जारी इबोला प्रकोप से मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मई से ही इबोला के मामले मुख्य रूप से पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में फैल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि इस महामारी से 6,186 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,007 लोगों की मौत हो गई है। मृत्यु दर 48.6% है। ये महामारी मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों सहित 6 प्रांतों में फैल चुकी है। उत्तरी प्रांत किवू के एक स्कूल में मंगलवार को नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय स्टाफ ने बच्चों से अपने हाथों को कीटाणु रहित करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रायसिस ने बुधवार को इस महामारी को अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप करार दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई है जिनका इलाज उपचार केंद्रों में नहीं चल रहा था या जिनका नाम ज्ञात संपर्कों की सूची में नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संक्रमण की ऐसी चेन मौजूद है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। WHO का कहना है कि ये प्रकोप बुंडी बूजो वायरस के कारण फैला है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है, हालांकि ब्रिटेन और कनाडा में 2 नए टीकों के सुरक्षा परीक्षण चल रहे हैं। जापान के कृषि मंत्रालय ने आलू किसानों के लिए एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित कर अमेरिका के एक अनुरोध पर जापानी प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। गौरतलब है कि अमरीका ने जापान से ताज़े अमरीकी आलुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। जापान में फिलहाल कीटों व बीमारियों को लेकर चिंता के कारण कच्चे आलू के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन पोटैटो चिप्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ आलुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। बुधवार को आलू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होक्काइडो के ओबीहिरो में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें बताया गया कि मंत्रालय ने उन बीमारियों और कीटों की पहचान लगभग पूरी कर ली है जिनसे निपटना आवश्यक है और वो अगले चरण में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारी मोचिज़ुकी मित्सुआकी ने कहा, जापान और अमरीका वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस बात पर चर्चा करेंगी कि किस प्रकार के निवारक उपाय अपनाए जाएं। इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या वे उपाय वास्तव में प्रभावी होंगे। आलू किसान मौजूदा नियमों में बदलाव होने पर अपनी फसलों और खाद्य सुरक्षा को होने वाले जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमों वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा स्की नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देस का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
4: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
4: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
4: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
4: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
4: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
4: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु।

0: どれが一番おいしいですか？
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: どれが一番人気がありますか？
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
4: इस वाक्य में
0: निंकी गारिमस
4: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
0: निंकी
4: का मतलब है लोकप्रिय और
0: अरिमस
4: है क्रिया
0: अर
4: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया,
3: कोरे गा ओसुमे देस,
4: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
0: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
0: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
4: तो दोस्तों, आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
0: निंकी गा अरिमास, इचिबान निंकी गा अरिमास, दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
0: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
3: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का? दोरे गा इचिबान यासुई देसु का?
4: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
0: ओतोकुना, ओतोकुना,
4: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
4: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: ご注文は？
0: ご注文は？
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
0: चूमुंग
1: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
4: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: ご注文は？タムさん、何にする？
6: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
7: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
4: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
4: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं। जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
4: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने ताजा दौर के हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता हासिल की है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इनमें से एक हमले में शादी का जश्न मना रहे दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने इसे युद्ध अपराध बताया है। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी काउंटी सिरिक में शादी के समारोह पर हुए हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 67 घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को जमकर लताड़ते हुए उस पर संघर्ष के दौरान हमलों में बच्चों सहित नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि वे इन खबरों से अवगत हैं और इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। व्हाइट हाउस में बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन ताज़ा हमलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर बेहद जोरदार वार किया है और उन्हें नहीं लगता कि ये ताज़ा कार्रवाई ज़्यादा समय तक चलेगी, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि वे और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। नेपाल और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और मृदा स्खलन के बाद दोनों देशों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है और 4,700 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने अपने यहां 1,204 लोगों के मारे जाने और 4,200 से अधिक के लापता होने की पुष्टि की है। उधर चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार उनके यहां इस आपदा में 21 लोग मारे जा चुके हैं और 540 से अधिक लापता हैं। दोनों देशों में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,225 हो गई है। अपने घर गंवा चुके कई लोग अब भी विस्थापित हैं। अधिकारियों के सामने चुनौती है कि उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए और संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए आश्रय स्थलों में स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए। इस बीच स्थानीय मीडिया केंद्रों के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम जिन आपदाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मजबूती से पेश करने का समय आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर ढहने से ये बाढ़ आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों की ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि नेपाल मुआवजे की मांग करेगा। आओमोरी प्रिफेक्चर के गोशोगावारा शहर ने बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे ईजुमे नदी और ओदोमारी जलाशय के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आपात सुरक्षा चेतावनी जारी की। अधिकारियों का कहना है कि भारी वर्षा के कारण ईजुमे नदी के तटबंध टूट सकते हैं। ये स्तर 5 की चेतावनी है, जो 5 स्तरीय चेतावनी पैमाने पर सर्वोच्च है। शहर प्रशासन लोगों से अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखते हुए अपनी जान बचाने के लिए आसपास की इमारतों में शरण लेने,

अपने मकानों की दूसरी या उससे ऊपरी मंजिलों पर जाने और ढलानों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने जैसे आवश्यक कदम उठाने का आह्वान कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस मध्य अफ्रीकी देश में जारी इबोला प्रकोप से मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मई से ही इबोला के मामले मुख्य रूप से पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में फैल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि इस महामारी से 6,186 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,007 लोगों की मौत हो गई है। मृत्यु दर 48.6% है। ये महामारी मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों सहित 6 प्रांतों में फैल चुकी है। उत्तरी प्रांत किवू के एक स्कूल में मंगलवार को नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय स्टाफ ने बच्चों से अपने हाथों को कीटाणु रहित करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रायसिस ने बुधवार को इस महामारी को अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप करार दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई है जिनका इलाज उपचार केंद्रों में नहीं चल रहा था या जिनका नाम ज्ञात संपर्कों की सूची में नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संक्रमण की ऐसी चेन मौजूद है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। WHO का कहना है कि ये प्रकोप बुंडी बूजो वायरस के कारण फैला है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है, हालांकि ब्रिटेन और कनाडा में 2 नए टीकों के सुरक्षा परीक्षण चल रहे हैं। जापान के कृषि मंत्रालय ने आलू किसानों के लिए एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित कर अमेरिका के एक अनुरोध पर जापानी प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने जापान से ताज़े अमरीकी आलुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। जापान में फिलहाल कीटों व बीमारियों को लेकर चिंता के कारण कच्चे आलू के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन पोटैटो चिप्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ आलुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। बुधवार को आलू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होक्काइदो के ओबीहिरो में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें बताया गया कि मंत्रालय ने उन बीमारियों और कीटों की पहचान लगभग पूरी कर ली है जिनसे निपटना आवश्यक है और वो अगले चरण में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारी मोचिज़ुकी मित्सुआकी ने कहा, जापान और अमरीका वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस बात पर चर्चा करेंगी कि किस प्रकार के निवारक उपाय अपनाए जाएं। इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या वे उपाय वास्तव में प्रभावी होंगे। आलू किसान मौजूदा नियमों में बदलाव होने पर अपनी फसलों और खाद्य सुरक्षा को होने वाले जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमोन वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: तामसान नानी सुरु,
0: ताम क्या लोगी।
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है।
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो,
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो,
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा,
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास,
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
5: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
5: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
5: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
5: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
5: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
5: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
5: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
5: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
5: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
5: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
5: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
5: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
5: निंकी गारिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
5: निंकी
0: का मतलब

0: मतलब है लोकप्रिय और
1: अरिमस
0: है क्रिया
1: अर
0: यानी होना का मास रूप।
2: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
3: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: ये वाला बढ़िया है।
2: यहाँ
1: कोरे
2: का मतलब है ये वाला और
1: ओसुसुमे
2: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: निंकी गा अरिमास। इचिबान निंकी गा अरिमास। दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमास का।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
1: यासुई। यासुई।
2: तो कोशिश कीजिए।
3: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का। दोरे गा इचिबान यासुई देसु का।
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
1: ओतोकुना। ओतोकुना
0: जो एक ना विशेषण है।
2: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: ご注文は？
1: ご注文は？
2: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
1: चूमों
2: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
2: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: ご注文は？タムさん、何にする？
5: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा मांस सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
2: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट नमक सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
2: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
2: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: किफायत कौन सा है?
1: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है गोचुमोवा के मानी है आप क्या लेंगे। रेस्तोरान या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चूमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गोचूमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़े है, इसलिए हज़फ कर दिया गया है।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
3: ご注文は？タムさん、何にする？
4: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: और अब खाने के शौकीन कायतों के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
0: रामेन नूडल्स डिश है। गुंधे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पार्चे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
2: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक या सिर्फ सब्जियों के अज्जा से तैयार करता रामेन भी दस्तयाब है।
2: और अब तो रामेन के नित नए जायके भी दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, बावर्ची नए जायकों की तैयारी जारी रखते हैं। मसलन अब पनीर और गाढ़ी क्रीम के जायके बनाए गए हैं। कई इलाकों में वहाँ के मखसूस अंदाज के रामेन भी हैं। मकामी खानों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद जहाँ भी जाते हैं वहाँ के मकामी जायकों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने ताजा दौर के हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता हासिल की है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इनमें से एक हमले में शादी का जश्न मना रहे दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने इसे युद्ध अपराध बताया है। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी काउंटी सिरिक में शादी के समारोह पर हुए हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 67 घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को जमकर लताड़ते हुए उस पर संघर्ष के दौरान हमलों में बच्चों सहित नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका की केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा कि वे इन खबरों से अवगत हैं और इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। व्हाइट हाउस में बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन ताज़ा हमलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर बेहद जोरदार वार किया है और उन्हें नहीं लगता कि ये ताज़ा कार्रवाई ज़्यादा समय तक चलेगी, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि वे और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। नेपाल और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और मृदा स्खलन के बाद दोनों देशों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है और 4,700 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने अपने यहाँ 1,204 लोगों के मारे जाने और 4,200 से अधिक के लापता होने की पुष्टि की है। उधर चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार उनके यहाँ इस आपदा में 21 लोग मारे जा चुके हैं और 540 से अधिक लापता हैं। दोनों देशों में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,225 हो गई है। अपने घर गंवा चुके कई लोग अब भी विस्थापित हैं। अधिकारियों के सामने चुनौती है कि उन तक राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए और संक्रामक रोगों का प्रसार रोकने के लिए आश्रय स्थलों में स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए। इस बीच स्थानीय मीडिया केंद्रों के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम जिन आपदाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मजबूती से पेश करने का समय आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्लेशियर ढहने से ये बाढ़ आई। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले चीन, अमरीका और भारत जैसे देशों की ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि नेपाल मुआवजे की मांग करेगा। आओमोरी प्रीफेक्चर के गोशोगावारा शहर ने बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे ईजुमे नदी और ओदोमारी जलाशय के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आपात सुरक्षा चेतावनी जारी की। अधिकारियों का कहना है कि भारी वर्षा के कारण ईजुमे नदी के तटबंध टूट सकते हैं। ये स्तर 5 की चेतावनी है, जो 5 स्तरीय चेतावनी पैमाने पर सर्वोच्च है। शहर प्रशासन लोगों से अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखते हुए अपनी जान बचाने के लिए आसपास की इमारतों में शरण लेने, अपने मकानों की दूसरी या उससे ऊपरी मंजिलों पर जाने और ढलानों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने जैसे आवश्यक कदम उठाने का आह्वान कर रहा है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस मध्य अफ्रीकी देश में जारी इबोला प्रकोप से मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मई से ही इबोला के मामले मुख्य रूप से पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में फैल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि इस महामारी से 6,186 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,007 लोगों की मौत हो गई है। मृत्यु दर 48.6% है। ये महामारी मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों सहित 6 प्रांतों में फैल चुकी है। उत्तरी प्रांत किवू के एक स्कूल में मंगलवार को नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय स्टाफ ने बच्चों से अपने हाथों को कीटाणु रहित करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रायसिस ने बुधवार को इस महामारी को अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप करार दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई है जिनका इलाज उपचार केंद्रों में नहीं चल रहा था या जिनका नाम ज्ञात संपर्कों की सूची में नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संक्रमण की ऐसी चेन मौजूद है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। WHO का कहना है कि ये प्रकोप बुंडी बूजो वायरस के कारण फैला है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है, हालांकि ब्रिटेन और कनाडा में 2 नए टीकों के सुरक्षा परीक्षण चल रहे हैं। जापान के कृषि मंत्रालय ने आलू किसानों के लिए एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित कर अमेरिका के एक अनुरोध पर जापानी प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने जापान से ताज़

0: ने अमरीकी आलुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। जापान में फिलहाल कीटों व बीमारियों को लेकर चिंता के कारण कच्चे आलू के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन पोटैटो चिप्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ आलुओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता। बुधवार को आलू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होक्काइदो के ओबीहिरो में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें बताया गया कि मंत्रालय ने उन बीमारियों और कीटों की पहचान लगभग पूरी कर ली है जिनसे निपटना आवश्यक है, और वो अगले चरण में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारी मोचिज़ुकी मित्सुआकी ने कहा, जापान और अमरीका वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस बात पर चर्चा करेंगी कि किस प्रकार के निवारक उपाय अपनाए जाएं। इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या वे उपाय वास्तव में प्रभावी होंगे। आलू किसान मौजूदा नियमों में बदलाव होने पर अपनी फसलों और खाद्य सुरक्षा को होने वाले जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे?
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
5: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
5: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
5: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
5: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
5: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
5: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
5: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
5: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
5: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
5: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
5: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
5: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
5: निंकी गारिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
5: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
5: अरिमस
0: है क्रिया
5: अर
0: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
7: कोरे गा ओसुमे देस।
0: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
5: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
5: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: निंकी गा अरिमास, इचिबान निंकी गा अरिमास, どれが一番人気がありますか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
5: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
7: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
5: ओतोकुना, ओतोकुना,
0: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ご注文は?
5: ご注文は?
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
5: चूमों
1: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ातरीन हमलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है और उनके ख्याल में ये नई मुहिम ज़्यादा तवील अरसे तक नहीं चलेगी। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि वो मजीद कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नेपाल और चीन में 26 अगस्त को दोनों ममालिक के सरहदी इलाके में बड़ा सैलाबी रैला आने और मिट्टी के तोड़े गिरने से 1200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 4700 से ज़्यादा ताहाल लापता हैं। नेपाली हुक्काम के मुताबिक 1204 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है और 4200 से ज़्यादा के बारे में कोई मालूमात नहीं है। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब 21 अफराद हलाक हुए और 540 से ज़ायद लापता हैं। दोनों ममालिक में मरने वालों की मजमूई तादाद 1225 हो चुकी है। बहुत से लोग जो अपने घरों से महरूम हो गए थे वो अब भी इनखला किए हुए हैं। हुक्काम को उन्हें इमदादी सामान पहुंचाने के तरीके तलाश करने और पनाहगाहों में हिफ्जान सेहत को बरकरार रखने के चैलेंज का सामना है ताकि मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। दरी असना मकामी ज़राए अब्लाग का कहना है कि नेपाली वज़ीर आज़म बालेंद्रा शाह ने बुध के रोज़ पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि हम आलमी बरादरी के सामने इन तबाहियों को भरपूर तरीके से पेश करें जिनका हम माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से सामना कर रहे हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि यह सैलाब एक ग्लेशियर की वजह से आया जो आलमी हिद्दत बढ़ने की वजह से टूट गया था। मकामी मीडिया ने यह खबर भी दी है कि नेपाली वजीर खारजा शीसर खनाल ने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा अखराज करने वाले ममालिक के तौर पर चीन, अमेरिका और भारत पर नेपाल जैसी मुतासर कौमों को मुआवजा देने की तारीखी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने इंडिया दिया कि उनका मुल्क हर जाना तलब करेगा। आओमोरी प्रिफेक्चर के गोशो गावारा शहर के हुक्काम ने जुमेरात की सुबह 6 बजे दरियाए ईजू में और ओदोमारी रेजरवायर के करीब कुछ इलाकों के लिए हंगामी हिफाजती अलर्ट जारी किया। हुक्काम का कहना है कि मूसलाधार बारिश की वजह से ईजू में दरिया का हिफाजती बंद टूट सकता है। लेवल 5 की सतह का ये अलर्ट 5 के वार्निंग स्केल पर सबसे बुलंद है। शहरी हुक्काम लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने गिर्दोनवाह पर नज़र रखें और ऐसे इकदाम करें जिनसे उनकी जानें बच सकें, जैसा कि करीबी इमारतों, अपने घरों की दूसरी मंजिल या मजीद ऊंची ऐसी जगहों पर मुंतकिल होना जो ढलवानों से दूर और महफूज हों।

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। DR कांगो में सेहत के हुक्काम का कहना है कि वस्ती अफ्रीकी मुल्क में जारी एबोला की वबा से मरने वालों की तादाद 3,000 से तजावज़ कर गई है। एबोला के केसेस बुनियादी तौर पर शुमाल मशरकी सूबे इतूरी में मई से फैल रहे हैं। सेहत के हुक्काम ने मंगल को ऐलान किया कि इस वबा ने 6,186 अफराद को मुतासर किया है, जिनमें से 3,007 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमवात की शरह 48.6% रही। ये वबा खास तौर पर मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों समेत अब 6 सूबों में फैल चुकी है। इस पस मंजर में शुमाली क्यो सूबे के एक स्कूल में अमले के अरकान को मंगल को नया तालीमी साल शुरू होने पर बच्चों को अपने हाथों को जरासीम से पाक करने की ताकीद करते देखा गया। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानोम गेब्रियोसिस ने बुध के रोज इस बीमारी को अभी तक मुशाहिदा करदा इंतहाई तेज रफ्तार वबा करार दिया है। उन्होंने निशानदेही की कि इलाज के मराकज के बाहर और ऐसे लोगों में भी बहुत सी अमवात की तस्दीक हुई है जो मुतासरीन से मालूम राब्तों की फहरिस्त में नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वायरस की मुंतकली के ऐसे भी सिलसिले हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है। WHO का कहना है कि ये वबा बूंदी बोजोन वायरस की पैदा करदा है। इस वायरस के लिए कोई मंजूर शुदा वैक्सीन मौजूद नहीं है, ताहम मंजूरी की उम्मीदवार

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカーネケショキンカイトケマシュロンカカーナル。アシカモズラーメンヘ。
2: ラーメンヌードルズディッシュヘ。グンデウエアテキバリックパティオンエヌードルズコ。ガランパニメオバルカーピアレメスープケサーピシキアジャタヘ。イスメウパセウブレウエンデ、ゴスケパーチェ、ヤサブジュージャシトピンズダリジャティヘ。ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। ताहम जापान में मुनफरिद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई इकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
2: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक یہ صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں۔
1: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں۔
2: جی ہاں, باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں۔ مثلا اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں۔ مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں۔